यह है विविध भारती झरोका में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 260 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन। इस कार्यक्रम का पांचवा भाग आज आप सुनेंगे। समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक सुबह 8:30 और रात 8:15 से। कर 30 से आज के फनकार केंद्रित होगा संगीतकार जीएस कोहली पर। आलेख व स्वर यूनुस खान। 10 पिटारा में सुनिएगा गीतों भरी कहानी। जिंदगी की यही रीत है। लेखिका रिद्धि चौरडिया। वाचन संपादन नेहा शर्मा।

11 बजे से चित्रपट संगीत। ग्यारह बजकर 30 मिनट से मैटिनी शो, जल है तो कल है। पर्यावरण विशेषज्ञ शुभजीत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, आज होगा इसका दूसरा भाग। एक बजे से सुरीला सफर, दो बजकर 30 मिनट से सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे से लेकर आएंगे मनचाहे गीत। दिन में 3 बजकर 30 मिनट से नाट्य तरंग में नाटक वो मंजिल कहां, लेखक डॉक्टर रणवीर सक्सेना, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। चार बजे से पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज। फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने, 6 बजकर 35 मिनट से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से विशेष जयमाला पार्श्व गायक अनूप जलोटा द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। सात बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा सुनो कहानी पीसनहारी का कुआं। इस कहानी का पहला भाग आज आप सुनेंगे, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे।

बजे से आपके लिए लेकर आएंगे। 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो, ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 260।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: की तरह। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवीं कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति मुझे याद आती है, एक पंक्ति मतलब कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है।
2: वाह,
1: शेक्सपियर ने भी कहा है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज पोएट्री। प्यारे दोस्तों, रविंद्र जैन साहब का गायन पक्ष और संगीत निर्देशन का पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही सशक्त है उनका लेखन। दादा एक बहुत अच्छे दर्जे के साहित्यिक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार हैं। इनकी प्रतिभा में कई बातें जुड़ गई हैं। क्योंकि दादा लिख नहीं पाते हैं, दृष्टि मंद है, फिर भी ईश्वर ने इनको इतनी संपदाओं और प्रतिभाओं से नवाजा है कि ये स्पॉन्टेनियस वहीं के वहीं तुरंत वातावरण और माहौल को महसूस करके कविता कह देते हैं। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं। और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि आज की श्रेणी के कवियों में रविंद्र जैन साहब कवि के रूप में बहुत ऊंचे हैं। आपके लेखन के बारे में आपके अनुभव के साथ कुछ जानना चाहते हैं।
2: मुझे साहित्यिक मेरी अभिरुचि बहुत, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ से ही है
1: जी।
2: लिख कितना पाया हूँ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सुना बहुत अच्छा है। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे लोगों ने रचनाएं की हैं कि बस आदमी पढ़ता रहे। मैं ये मानता हूँ उम्र बहुत कम है ऐसी कलाओं को, ललित कलाओं के लिए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, सुन लें, वही हमारी उपलब्धि है। मैं थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो, जैसा कि आपसे बताया, अलीगढ़, एक तो उसकी उसमें फाउंडेशन में अलीगढ़ मौजूद है, फिर कलकत्ते गया टैगोर का, उनको पढ़ा सुना बहुत,
1: साहित्य पढ़ा टैगोर
2: जी, बहुत अच्छे अच्छे वो तो क्या कहें, लाजवाब लोग हैं। आज आप कविता के किसी मोड़ पे खड़े हो जाइए, गुरुदेव आपको वहाँ मिलेंगे।
1: शिलालेख हैं वो लोग,
2: शिलालेख
1: बिल्कुल।
2: फिर वहाँ के कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम और डीएल राय, बड़े बड़े बड़े विशेष लोग,
1: कमाल के लोग हैं ये।
2: जी जी, तो उन वहाँ से मैं मुझे जो गढ़ा गया है, उन सब चीज़ों ने गढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आज हम जो कुछ कहें कम से कम ऐसा कहें कि उन लोगों को शर्मिंदगी ना हो, उनसे अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन उनको शर्मसार ना होना पड़े। हमारी
1: अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि आपकी सृजन की हुई कुछ रचनाएं हम अपने श्रोताओं को सुनाएं और आपके काव्यात्मक हुनर का भी दर्शन करें।
2: फिल्म में तो आपने महसूस किया कि मैंने हमेशा उन गीतों की ऊंचाई देना चाहिए है, ऐसे लफ्ज लाया हूँ संकेत है और इस तरह के, जल जो जल ना होता तो ये जग जाता जल, अलंकारों का भी प्रयोग है, सजना है मुझे सजना के लिए।
1: और बल्कि मैं यह यूं कहूंगा कि आपने फिल्म और साहित्य को बहुत नजदीक लाने की कोशिश की है जिसमें आप सफल हुए हैं, तो कुछ अपनी रचनाएं आप
2: आपको सुनाती हूँ। एक पीछे एक मेरी किताब शाया हुई थी गजलों की
1: जी,
2: उजालों का सिलसिला, उसमें से एक गजल के दो तीन शेर आपको सुना रहा हूँ।
1: इरशाद।
2: उफ ये सफर तवील ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील ये छालों

0: दादा, आपके इतने सुंदर गायन और इतनी सुंदर शब्द रचना से ऐसा लगता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर कहीं ना कहीं है जिसने आप जैसा प्रतिभा संपन्न कलाकार इस धरती पर उतारा। अच्छा, आपके लेखन के सफर में आगे चल रहे हैं तो आपने बहुत सी सांकेतिक भाषाएं और तुलनात्मक भाषाएं और अलंकार बहुत इस्तेमाल किए अपने गीतों में, जिससे संगीत का यानी फिल्मी संगीत का स्तर बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। कुछ ऐसे गीतों के बारे में जानकारी दें जिसमें आपने कई उपमाएं और कई अलंकार इस्तेमाल किए हैं और कॉमर्शियली भी वो गाने बहुत हिट हुए हैं।
1: सबसे पहले वो सौदागर में आशा जी का गाया हुआ गीत सजना है मुझे सजना के लिए।
0: वाह वाह वाह, क्या उपमा है।
1: एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। भूषण जो वीरस के कवि हैं आपने उनको जरूर पढ़ा होगा।
0: जी जी।
1: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
0: वाह वाह।
1: तीन वेर खाती थी सो तीन वेर खाती है, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती है। तो इसी तरह का प्रयोग इस गीत में है।

0: उससे शॉपिंग हो जाए
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: घर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
6: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
4: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
8: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल सुझाव थे।
4: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
9: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह

0: 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, एथिक्स एंड कंपैशन। इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स दिस विजन बाय प्रमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च, क्रिएटिविटी एंड इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन।
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोश्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज

0: आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई, फिर भी CJP टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves NTA paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून को लाने को लेकर जारी किए गए अपने संदेश पर लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वीडियो को 24 घंटे में 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया है। इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 30 करोड़ व्यूज का था।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट परीक्षा पेपर लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में पांचवें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों में कार्यवाही सोमवार तक स्थगित है। दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की विजय की याद में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। दो दिवसीय स्मारक कार्यक्रम आज से शुरू होंगे, जिसमें 1999 के करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बार्ब सामे को 3-1 से हराया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। किस्मत कनेक्शन फिल्म का नाम था। शबीर अहमद ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी मेरा,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार ने इसे लिखा और शारिब तोशी का संगीत।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

0: आज के फनकार
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई, न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा। सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता। वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

तो एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन के जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रपट संगीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें आपने सुनी बुढ़ा मिल गया फिल्म के इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, और अब आपको कारवां फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।

0: कारवां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: एनी इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, असर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। और आपको ये भी बताते चलें कि आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे से फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, और इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अभी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

शोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान। और मैटिनी शो प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बातें की थी जल है तो कल है, शुभजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। और उन्होंने बीते हफ्ते बताया था कि कैसे जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने शुरू किया था वृक्षारोपण से और तब उन्हें समझ में आया कि पेड़ तो तभी जिंदा रह सकते हैं जब पानी उनको जरूरत भर का मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं
1: जी
2: वो नेचर लवर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड है, वो बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, जो इतने कर्मयोगी हैं सब
1: जी,
2: उनके साथ मिलके जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, जिस हिसाब से कॉल्स आते हैं, पिछले हफ्ते जब बात हुई कई लोगों ने मुझे मेल किया है, इनफैक्ट मेरे इनबॉक्स लगभग भरने वाला था
1: जी जी,
2: बहुत अच्छा लगा इस बात
1: बिल्कुल, क्योंकि विविध भारती को पूरे देश में और बल्कि दुनिया के तमाम देशों में लोग सुनते हैं और ये वो लोग हैं जो अपने तई बदलाव करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने बातें की थी तो आपने जल तारा के बारे में बताया था, मैं ये जो बातचीत है इसको गांव की दिशा में मोड़ना चाहता हूं।
2: बिल्कुल,
1: गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसका जमीन पर घर है और गांव में कुछ दूर पर उसके खेत हैं, या तो उसके खेत हैं या किसी और के खेत हैं जहां वो काम करता है, ऐसे लोग जो विविध भारती सुन रहे हैं उनको वाटर कंजर्वेशन या जल संचय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं अपने तई, ये बताइए।
2: बिल्कुल जी, इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि किसानों का विषय आपने लिया है, क्योंकि जो मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं ज्यादातर किसान है, उसमें मैं तो बोलूंगा 100 में से 80 किसान भाई बहन है जिनका मेल आ रहा है, एंड सब पानी से परेशान है
1: जी।
2: क्यों? कि उन लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे पास कम से कम 10 महीना पानी होता था, आज हमारे पास 8 महीना पानी है, बाकी हम लोग 4 महीना खाली बैठे रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें, खर्चा नहीं पूरा होता, इसलिए शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है। एंड आजकल के न्यू जनरेशन अवॉइड कर रहे हैं खेती करना क्योंकि ये पानी की कमी है, इसलिए वो हमें ये बोलने, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कुछ बताइए हमारे पास 12 महीना पानी हो ताकि हम 12 महीना काम करेंगे। एंड बात सही है, क्योंकि अगर हम 150 करोड़ आबादी है हमारे देश का और इनको अगर हमें खाना खिलाना है तो हमारे किसान तो 12 महीना काम करना ही पड़ेगा ना उनको। अगर वो बोलेंगे कि 6 महीना पानी नहीं है, 4 महीना पानी नहीं, हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एंड थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक लिया
1: जी।
2: एंड और भी बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट यस, किसानों को पानी ज्यादातर जरूरत पड़ता है उनका खेती के लिए। एंड खेती में पानी उपयुक्त मिले, क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए, पानी का गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को माइंड में रखते हुए स्पेशल खेत में जल संचय करने का थोड़ा डिफरेंट विधि है, लेकिन है यही सिस्टम। हमें शोष खड्डा बनाना है, हमें परकुलेशन पिट बनाना है, जल तारा बनाना है, बट उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, फ्री तरीका है, इसमें उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत है। देश भर में आज भी जो खेती हो रहा है, हम लोग बोरवेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर
1: और इस वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है।
2: देखिए, एक है जब बारिश हो रही है उस समय हम लोग ऐसी ऐसी चीजें ग्रो करते हैं जैसे चावल है,

0: शुगर केन है, कॉटन है, कपास की खेती बहुत होती है, गेहूं की भी खेती होती है। जब पानी है तब हम लोग ये खेती कर लेते हैं, जब पानी खत्म हो जाता है तो हम लोग सब्जियों पे आ जाते हैं, हरी सब्जियों पे आ जाते हैं। तो इसलिए पहला तो हमें ऐसी चीज़ों को ग्रो करना है जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत पड़े, या जब पानी बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारा 70% पानी बह के समुंदर में और नदी में चला जा रहा है
1: जी।
0: तो बारिश के समय जिन सब्जियों में और जिन चीज़ों में ज़्यादा पानी लगता है तो हमें उस समय ग्रो करना है, क्योंकि पानी बहुत होता है। जैसे ही पानी कम होने लगता है हमारा पूरा फोकस चला जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि 6 महीना सोच लीजिए आपने बारिश का पानी खींच लिया, बाकी का 6 महीना हमें अगर काम करना है तो बहुत ज़्यादा हमारे किसान जमीन से पानी निकालने लगते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है सब्जियों का लेकिन जमीन का पानी खत्म हो जा रहा है।
1: ये जो 70% पानी चला जा रहा है समुद्र में, इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या एक आम आदमी इसे बचा सकता है?
0: बस वही सोच है
1: जी।
0: यहाँ हम जब एक किसान की बात कर रहे हैं या किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं या किसान को माइंड में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, खेत का पानी खेत में रहना जरूरी है
1: जी।
0: एक तो हम लोग मेड़ बनाते हैं खेत में ताकि पानी रोक के रख सकें, दूसरा जब खेत में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बोरवेल सूख चुका है, बोरवेल में पानी नहीं है, तो वापस डालना भी जरूरी है। ये तो वही बात होगी, जमीन के अंदर एक पानी को आप अगर आप मान के चलिए, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, हजारों साल लगे हैं पैसा जमा करने में, मे भी आपके दादाजी पर दादाजी ने पैसा जमा किया था और अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वही हुआ है
1: पानी के साथ भी ऐसे ही है।
0: बस तो पानी खत्म हो चुका है, अब उसको हम लोग दोबारा वापस डालना जरूरी है। मैं सबको यही, ये जो जल संचय और जन भागीदारी का ही प्रेरणा है कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हर बोरवेल के बगल में एक माइक्रो पॉन्ड कहते हैं इसको, जल कुंड कहते हैं हम लोग, जल तारा ही कहते हैं, जिसमें वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, 15 फुट बाय 15 फुट और 2.5 फुट गहरा, एक
1: अच्छा।
0: छोटा सा जल कुंड बनाना है ताकि बारिश का पानी आपके बोरवेल का जो पाइप है, बोरिंग का जो पाइप है, उसके बगल में जमा रहे। एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बोलूंगा और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि जब भी हम बोरवेल खोदते हैं 6 इंच का पाइप अगर जमीन में जा रहा है तो 8 इंच की खुदाई होती है, जो मशीन होता है ना उसका मुंह बड़ा होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है वो तो ग्राइंड हो चुका है, वो तो पाउडर बन चुका है। अब अगर आप बोरवेल के आसपास पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का तो धीरे धीरे नॉन स्टॉप जमीन में पानी जाता रहेगा,
1: क्योंकि वो पिट जो है वो बड़ा बना है,
0: बड़ा बना हुआ है। बोरवेल क्या होता है, 200 300 400 हजार फीट नीचे से पानी निकाल रहा है, नीचे पत्थर है, पत्थरों के बीच में गैप है, उसको एक्वाफर कहते हैं, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। जिस गैप से हमने पानी निकाला है और बोरवेल का पाइप मतलब एक स्ट्रॉ मान के चलिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी स्ट्रॉ को यूज करके अगर हम पानी वापस डाल दें तो हमारे पास पानी दोबारा भर जाएगा कम से कम लागत में, और कम से कम लागत के आपको सिर्फ श्रमदान करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
1: अच्छा, कोई किसान या कोई गांव वाला अपने घर में, खेत में या अपने आंगन में जल संचय की कोई विधा बनाना चाहता है, कोई सिस्टम बनाना चाहता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये सर। सबसे पहला जरूरी है, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि पानी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर एक पानी को आप संचय कर रहे हैं कि खेत में इस्तेमाल करना है और खेत का पानी है, तो याद रखिएगा खेत में हमने पेस्टिसाइड डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, टॉप सॉइल का पानी है, तो वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डिफ्रेंशिएशन हम मेंटेन रखें। जिस बोरवेल में आपने खेत का पानी डाला है तो 1 किलोमीटर दूर भी अगर आप उस पानी को निकालेंगे तो वो जहरीला हो सकता है, आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए घर में जो आप पानी जमा कर रहे हैं वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ होना जरूरी है। छत का पानी आप उसमें डाइवर्ट करवाइए, छत का पानी साफ होता है, पहले बारिश का पानी बह जाने दीजिए, फिर छत एकदम साफ हो जाता है, उस पानी को आप बोरवेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कीजिए। एक दो टेक्निक है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज। तो छत का पानी बहुत साफ होता है, उसको आप बोरवेल के अंदर डालिए, साफ रहेगा, आप पी सकते हैं। खेत का पानी खेत में इस्तेमाल करेंगे उसको पीने में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। एंड जल संचय उतना कीजिए जितनी आपकी जरूरत। बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है, कितना बारिश हो रहा है, कितने समय के लिए बारिश हो रहा है, आपको बता देगा कि कितना आपके पास छत है, उस हिसाब से कितना पानी आप कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप एक टंकी बना के सेव कीजिए या परमानेंटली भूजल ग्राउंड वाटर में उसको जमीन में समाने दीजिए, जितना सोख हो जाएगा आप, जैसे कि मैं कह रहा हूँ उसमें इवेपोरेशन नहीं है, निकाल के इस्तेमाल

करते रहिए, 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे वो जमीन के अंदर मिलेगा। बाकी अगर आप खेत है, आपको पानी ज़्यादा चाहिए तो आपको सिस्टम ज़्यादा बनाना पड़ेगा। साइंस ये कहता है हर एकड़ में एक जल संचय होना चाहिए, हर एकड़ में एक जल तारा इंस्टॉल होना चाहिए, हर एकड़ में अगर आपके पास बोरवेल है, देखा जाता है हर एकड़ में एक बोरवेल मिल जाता है आजकल, तो बोरवेल इतना ज़्यादा लोगों ने बना दिया है, बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे देश में। एंड बोरवेल भी 4 वैरायटी के होते हैं, ये लोग आइडेंटिफाई अक्सर भूल जाते हैं ये चीज़। एक होता है फेल्ड बोरवेल, हमने एक जगह ड्रिल मशीन से

0: दिया, इसको आप जलतारा बना दीजिए, इसके ऊपर पानी कलेक्ट कीजिए, पानी जाने लगेगा, बहुत सिंपल। सेकंड, डेड बोरवेल एक होता है
1: जहां का पानी सूख चुका है,
0: जो पहले आता था, पिछले 5 साल से वहां पानी ही नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं पानी आता था, अभी नहीं आ रहा है, मतलब पानी डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा।
1: यस,
0: तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, डेड बोरवेल को अलाइव कर देना है। मुर्दा को हम लोग जान डाल सकते हैं,
1: जी जी,
0: वहां पे भी आप जलतारा लगा दीजिए। फिर मैं आ जाता हूं ड्राई बोरवेल, मतलब पिछले साल यहां पे पानी था, आज पानी नहीं है।
1: इसका क्या मतलब है?
0: मतलब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ज्यादा एक्सट्रैक्शन
1: तो
0: हो गया।
1: डेड बोरवेल में भी तो ग्राउंड टेबल वाटर,
0: डेड बोरवेल आना बंद ही हो गया है 5 सालों से, 5 साल का रिकॉर्ड बताता है पानी ही नहीं है। बट ये है ड्राई बोरवेल, जो पिछले साल पानी था आज नहीं है,
1: ओके,
0: फ्रेश फ्रेश अभी अभी मरा है ये।
1: तो इसको जिंदा जल्दी किया
0: तुरंत, इस प्रायोरिटी है
1: जी।
0: एंड चौथा कैरेक्टर में बोलता हूं पार्शियली ड्राई, मतलब अक्सर लोग फोन करते हैं, भाई साहब मेरा 3 घंटा पानी देता था, अभी सिर्फ 15 मिनट पानी दे रहा है। पिछले साल इसी समय 2 घंटा पानी देता था, आज सिर्फ आधा घंटा पानी दे रहा है, तो ये पार्शियली ड्राई हो चुका है। या पिछले महीने तक पानी देता था, अभी पानी नहीं दे रहा है। मैंने, मेरे पास अभी जैसे किसान भाइयों का जो मेल आया है, जैसे पिछले हफ्ते आपने मेरा ये इंटरव्यू लोगों को दिखाया, ज्यादातर यही बोल रहे थे कि हमारा पिछले साल जून महीने में पानी था, इस बार जून महीने में पानी नहीं है। पिछले साल मई महीने में पानी था, अभी भी बारिश नहीं आई है, तो हमारा पानी नहीं है। तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश उनको साल भर पानी मिल रहा है, बट कई ऐसे बोरवेल हैं जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब सूखने लग जाते हैं। उनको भी हम लोग ये 4 कैटेगरी को माइंड में रखते हुए जलतारा बना सकते हैं, 15 फीट बाय 15 फीट, 2.5 फीट गहरा खड्डा, बस इतना ही।
1: तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
0: बस श्रमदान हो रहा है। एंड थैंक यू NSS, थैंक यू NCC, ग्रीन क्लब
1: जी,
0: जो हमारे कॉलेज के बच्चे जाके ये बना रहे हैं। पालघर में हमने 750 से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं पिछले 1 सालों में,
1: और इससे बड़ा भारी बदलाव आया होगा,
0: और सब अलाइव हो गए हैं, सारे मरे हुए बोरवेल जिंदा हो गए हैं, और क्या, पानी भरा हुआ, जब खुश हो गए हैं।
1: अच्छा, जो देश के सुदूर इलाकों के स्कूल कॉलेज ऑफिस मोहल्ले इस मामले में क्या कर सकते हैं, खासतौर पर अब ये हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस की जगह पर अपार्टमेंट आ गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और अपार्टमेंट में ये होता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं क्यों करूं वो करे, तो सब मिलकर करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना आसान है कि एक बिल्डिंग के लोग भी एक साथ आ जाए और इस काम में जुट जाए?
0: देखिए, ये 2 अलग अलग पहलू है, मैं बताना चाहूंगा। मैंने जो कुछ 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया है जल संचय के ऊपर, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जुड़ गए इसलिए हो पाया। जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक एक जल तारा इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में 500,000 बच्चे होते हैं, वो सीख जाते हैं ये चीज, और वो घर जाके माता पिताओं को बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमारे स्कूल में दिखाया गया है, और हमने ये बनाया है, हम अपने घर में भी बनाएंगे, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और सबको मैं यही बोल रहा हूँ, आप ज्यादा काम मत कीजिए, 4 फुट बाय 4 फुट और 3 फुट खड्डा बनाइए और छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर दीजिए, हमारा काम शुरू हो गया जल संचय का। तो ये जहाँ यूथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यूथ इसमें जुड़ चुका है। तो वही मेरी कोशिश कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान का इंस्पिरेशन लेके कि हम लोग इसमें यूथ को जोड़ें। तो स्कूल कॉलेज NSS NCC ग्रीन क्लब सबको इसमें जोड़ने की कोशिश है, जिसने बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है, बिकॉज इन लोग जुड़ चुके हैं। बाकी शहरों में जल संचय करना आसान है क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन करना आसान है। खेतों में हमारे पास छत नहीं होते। अगर मैं मुंबई की बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, हर शहर में इतना कंक्रीट बन चुका है, इतने छत बन चुके हैं कि छत का पानी बहने ना दें, छत का पानी एक बारिश के बाद एकदम साफ पानी आता है, वो पीने लायक पानी है। हम उस पानी को तुरंत हर घर जल संचय जो अभियान चल रहा है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, छत का पानी है, मेरा छत मेरा पानी, मेरा स्कूल मेरा पानी है, वही मैं सबको बोल रहा हूँ, और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप अपने हिस्से का, आपके पास जो पानी आ रहा है आप रोक के रखिए, आपका छत नीचे पानी जाएगा तुरंत। इसमें खर्चा कम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बड़े से बड़ा। और बोरवेल तो हर घर में है आज के जमाने में, ट्यूबवेल बोरवेल हैंडपंप भी उसी कैटेगरी में आता है। कुएं, कुएं को लोग अक्सर बुझा देते हैं, कुएं में पत्थर डाल के बंद कर देते हैं, कुओं को आप लोग बिल्कुल बंद मत कीजिए। छत का पानी एक बारिश के बाद जो दूसरा पानी आ रहा है उसको कुएं में बिल्कुल, बस पाइप को तो आपको बस

0: तो गटर में बाहर जा रहा था, उसको आपने इधर कर दिया, पानी कुएं में
1: डाइवर्ट करना है,
2: डाइवर्ट करना है।
1: आपने कुओं की बात की तो मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई, और वो है कि एक जमाने में तमाम छोटे शहर और गांव में कुएं, बावड़ियां, छोटे छोटे तालाब और इस तरह की वाटर बॉडीज हुआ करती थी, जो अब खत्म होती चली जा रही है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, बावड़ियों को बुझा दिया गया, सुखा दिया गया, पत्थर भर दिए गए, कुएं खत्म हो गए, झीलें, तालाब, क्या महत्व है इनका? पुराने जमाने से लोगों ने इस बात को समझा था, तभी तो इन्हें बनाया था।
0: मैं आपको क्या बताऊं, इसका जवाब दूंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं हम सबकी गलती है
1: जी।
0: एंड मैं कुछ इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को उंगली नहीं बता रहा हूं किसी की गलती। पहले हम लोग तालाबों से पानी लेते थे, तालाब छोटे पड़ने लगे, आबादी बढ़ गई, तो हम लोग कुआं खोदना शुरू किए। कुआं छोटा पड़ने लग गया, आबादी बढ़ गई, हम लोग बोरवेल पे आ गए। बोरवेल कम पड़ने लग गया, म्यूनसिपलिटी बोल रही कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में पानी पहुँचा दूंगा। अब वो भी कम पड़ने लग गया है, क्योंकि हम लोग बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये अलग अलग एल नीनो और अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, जो तालाबें थी वो नेग्लेक्ट होने लग गई है, जो कुएं थे वो ऑब्सलीट हो चुका है। आज मैं किसी को भी बोलूं कि चलो कुएं का पानी पिलाऊं, बोलेगा भैया मरना क्यों चाहते हो, मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाता है, भैया इसी से पी लो। आप बताइए, मैं मुंबई में हूं, कोई कुएं का पानी पीने लायक है? कोई नहीं है।
1: कुएं कहाँ है?
0: अब जो कुएं है प्राइवेट है कुएं
1: जी।
0: अब जिस चीज का कोई उपयोग ही नहीं है, हम उसको रख के क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विंटेज कार पड़ी हुई है, चलती भी नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको कबाड़ में डालना पड़ेगा ना
1: जी।
0: तो कुएं का मतलब हो गया, ये तो कबाड़ है हमारे लिए जिसका उपयोग नहीं है। हम 10 फीट बाय 10 फीट का खड्डा है, पड़ा हुआ है, कोई गिर के मर सकता है, उसका पानी खराब हो गया, कुएं का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है 10 सालों से, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, क्योंकि पार्किंग लॉट सोसाइटी में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं सोसाइटी को, तो कुआं रख के फायदा क्या है? जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि कुएं का फायदा है, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी या कोई बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा या हम आप इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कुआं बेकार है। वही हुआ तालाब का सिचुएशन। मैं बंगाल गया था अभी, मैं बेंगलुरु गया था, चेन्नई गया था, जो सिटी ऑफ लेक्स बेंगलोर को बोला जाता था, अब लेक्स तो नजर ही नहीं आता है मुझे। बंगाल में आपको पता है मेरे दादाजी की शादी दादी के साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास एक तालाब था।
1: ओहो,
0: मेरी दादी की जो मम्मी थी उनसे मिली थी, उन्होंने कहा था उस समय पहले जमाने में जिस लड़के के पास तालाब है मतलब वो क्वालिफाइड है। तुम डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, तुम्हारे पास तालाब है मतलब पानी है, तुम्हारे पास तालाब है मतलब मच्छी है, तुम जिंदा रहोगे,
1: क्या बात,
0: बाकी पढ़ाई लिखाई अपने जगह। वो कल्चर कहाँ गया है? तालाब इतना महत्व होता था। आज के जमाने में लोग गाड़ी खरीदते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बैंक बैलेंस दिखाते थे, उस समय बैंक बैलेंस और एफडी यही होता था,
1: तालाब होता था।
0: तालाब है भाई इसके आदमी के पास।
1: हमारे शहरों के तालाब, कुएं, हमारी झीलें, बावड़ियां, ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई हैं
0: बहुत ज्यादा। और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये भी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ नदी, नदी बचाने के लिए नदी के किनारे जो घाट बनाने से नदी नहीं बचेगा। नदी होता है नदी के पानी से, नदी होता है नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, वो नदी होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर पानी पीने लायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पियो पानी, बट कम से कम अगर इंसान पी सकता है तो बाकी जीव जंतु भी उसमें रह सकते हैं। नदियों में जो लाइफ आसपास होता था, नदियों के पानी में जो मछलियां होती थी, अलग अलग तरीके के जानवर होते थे, वो सब मरने लग गए क्योंकि नदी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है
1: जी।
0: तो बहुत जरूरी है, जब मैं नदी की बात कर रहा हूँ, तालाबों की बात कर रहा हूँ, दीघी की बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लेक हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं अक्सर मैंने देखा है अलग अलग म्यूनसिपलिटी के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के लोग, अलग अलग एनजीओ लोग, तालाब तो गंदा पड़ा हुआ है, तालाब में मतलब एक मछली नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन चारों तरफ बेंच लगा दिया, लाइट लगा दिया और वॉकिंग स्ट्रिप बना दिया है। वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, वो लेक रिजुनोवेशन नहीं होता है
1: जी। जी बिल्कुल।
0: जल शक्ति मंत्रालय ने जो रूल बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है, उसको पढ़िए, उसका पहला पॉइंट ही है क्वालिटी ऑफ वाटर। उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज किया जा रहा है, जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, जल शक्ति मंत्रालय में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमारे देश के सारे धुरंधर वहीं बैठे हुए हैं। सच बताओ, मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का, वो बहुत अच्छे सोच है उनका, वो सोच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सोचा आपके माध्यम

0: से ये बात लोगों को बताऊं
1: बिल्कुल
0: कि आप, आपके पास अगर तालाब है, तालाब से आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं। मैनग्रोव की कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता है, मैनग्रोव से कितना केकड़ा बनता है, कितने टाइप के खाना आता है। आज भी करोड़ों लोग दुनिया में मैनग्रोव से चीजें ऐसी आती हैं जिससे लोग खाते हैं, खा के जिंदा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनग्रोव कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि वो भी एक वाटर बॉडी में से आता है। उसी तरह हर तालाब को कंजर्व करना जरूरी है ताकि उसमें से मछलियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं खाने की चीजें उसमें से मिलती है। वाटर बेस्ड बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स आ गए, आजकल तो फ्लोटिंग फार्म भी शुरू हो गया है। और तालाबों का रक्षा करना हर किसान के लिए तो पहला धर्म होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी लाया है। वो पॉली पॉन्ड बना के देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, हर किसान को बोला गया है कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है उसमें से आधा एकड़ में आप पॉली पॉन्ड बनाइए, बारिश का पानी उसमें संचय कीजिए, उसके अंदर जमा कीजिए। और न्यू टेक्नोलॉजी है, आजकल टेक्निक्स हैं, लोग उसका बहुत फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट करोड़ों पॉली पॉन्ड बनाए हैं देश ने।
1: जी जी,
0: मैं तो बोलूंगा कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक इंसानों का जो हिस्ट्री है, इतना बड़ा जल संरक्षण का अभियान कभी किसी ने न किया न कभी होने वाला है, जो इस समय हमारे भारत देश में चल रहा है।
1: जी, जल संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है कि आपके काम के कुछ और दिलचस्प हिस्सों की बात करें। एक आपके काम का हिस्सा है जो आम से जुड़ा हुआ है, ये क्या मामला है भाई? आम आदमी से आम तक?
0: बिल्कुल, आम आम नहीं, खास है।
1: अच्छा, आम के बीजों का संरक्षण, वो क्या मामला है?
0: जी, ये किसानों का लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है कि आज किसान इतना पानी के ऊपर निर्भर करता है, कभी ज्यादा पानी आ गया हमारा खेत बह गया, कम पानी आ गया तो खेत जल गया, हम ये बोलते हैं। इसलिए पैडी बेस्ड कल्टीवेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो कहीं पर गलती कर रहे हैं। एक फार्मर पूरा निर्भर हो जाता है कि हम चावल का खेती करेंगे या ऐसा खेती करेंगे जो सिर्फ टॉप सॉइल से आता है और जिसमें इतना इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर क्या क्या डालना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, हमारा पेड़ कभी मरता नहीं है। एंड टॉप सॉइल, ऊपर का जो मट्टी है 1-1.5 फुट का, इतना मैं बोलूंगा इतना डेंजरस हो चुका है, जहरीला हो चुका है कि ऐसा कुछ खेती किया जाए जो जमीन के सब सॉइल से आए। तो फल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो जड़ उसका नीचे तक जाता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहे हैं। और फल, रोटी खाने से अच्छा है कि आप फल खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं एंड बातचीत चल रही थी, जब बात हो रही थी कि हम लोग फल मिशन फ्रूट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात में लोगों को ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप फल खाइए ज्यादा,
1: जी जी,
0: आप चावल क्यों खाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, हम लोगों ने हमारा खेत जितना जंगल था काट दिया है, जंगल काट काट के हम लोगों ने सीधा जमीन कर दिया और उसमें सिर्फ चावल बो रहे हैं, शुगर केन बो रहे हैं, जितने फल के पेड़ काट दिए हैं, जंगल खत्म कर दिया है। अगर आप किसी को देखिए, जब खेती खत्म हो जाता है सब पीला पीला मिट्टी दिखता है, काला मिट्टी तो दिखता भी नहीं है, इट इज ऑल बैरन लैंड। इसको बचाने के लिए मेड़ पे पेड़ प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का।
1: जी जी,
0: गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपके पास जितना भी जमीन है 20% जमीन पे फल का पेड़ लगाएं।
1: जी,
0: और जब मैंने किसानों से पूछा फल का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो किसान बोल रहे हमें तो कोई फल का पेड़ देता ही नहीं है साहब, हमें तो इमली का पेड़ दे रहे हैं फल के नाम पे, सिर्फ आंवला का पेड़ दे रहे हैं, हमें तो आम दीजिए तो मजा आए।
1: अच्छा,
0: तब मुझे समझ में आया आम आम नहीं है, खास है।
1: क्या बात,
0: किसी
1: है?
0: भी किसान को बोलिए आम का पेड़, बोले हाँ तुरंत, कभी नहीं मना करेगा।
1: जी जी,
0: आम हम लोग खुद भी खा लेते हैं इतना ज्यादा कि एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: इतना बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। एंड आम एवरग्रीन पेड़ है, पतझड़ नहीं होता है आम में।
1: बिल्कुल,
0: और मैं लोगों को बोलता हूँ आम का पेड़ एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें हर टाइप का जंगली जानवर रहता है।
1: वाह वाह,
0: एक चिड़ियों का घोंसला भी दिखेगा, उसमें लेपर्ड भी बैठा होगा, उसमें शेर भी बैठा होगा, उसमें एक बंदर भी बैठा होगा और सांप भी रह रहा होगा। तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है,
1: इसलिए आपने ये मुहिम शुरू की।
0: इसलिए मुहिम, मेरी कोशिश ये है कि फार्मर्स को आम का पेड़ दिया जाए, और सिर्फ आम का पेड़ तो ऐसे एक बहाना है, जब हम आम का पेड़ देते हैं तो उसके साथ 15 अलग अलग वैरायटी के पेड़ भी दिए जाते हैं
1: फलों के,
0: फल के हैं, पॉलिनेशन के लिए इमली, वहाँ नीम का भी पेड़ दिया जाता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं ताकि आम जो और बड़ा हो सके और नेचुरल तरीके से हो सके।
1: क्या बात है,
0: ये है इसका टेक्निक।
1: अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहता हूँ कि जो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो जरूर दीजिए, ताकि ये तमाम बातें सुनने के बाद जो लोग प्रेरित हों, जो लोग इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहें या किसी और को जोड़ना चाहें,

0: आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल कीजिए waterherooffindia@gmail.com पे
0: जी।
1: एंड पिछले बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए कि आपका समस्या पूरे डिटेल में। सिर्फ हेलो लिख के भेजेंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय जाता है। आपको जल संचय करना है तो कितना जमीन है, किस शहर से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में लिखिए।
0: जमीन का क्या साइज है?
1: बिल्कुल,
0: जमीन का क्या मिजाज है?
1: छत का क्या साइज है अगर आपको घर में करना है? पानी की कमी है तो क्यों है, कितना है? थोड़ा सा डिटेल रहेगा तो हम और बेटर तरीके से समझा पाएंगे।
0: तो सुभजीत जी, आप सभी की ईमेल्स का इंतजार कर रहे हैं। आप ईमेल करेंगे तो इनसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने इलाके में पानी की समस्या का निदान कर सकते हैं। सुभजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर गाने की फरमाइश करनी होगी, फिर आपसे इजाजत लेंगे।
1: बिल्कुल जी, एंड इस बार गाना आप डिसाइड कीजिए।
0: देखिए, आप पानी पर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि माचिस फिल्म का पानी पानी रे गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप भारत के वाटर हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहिए और सार्थक काम करते रहिए।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।

ये था आज का मैटिनी शो। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग हैं और इस कार्यक्रम को जुबैर खान ने प्रस्तुत किया। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत और हाँ, वाटर्स प्रिजर्वेशन की दिशा में हम सबको काम आगे बढ़ाना ही है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: এতক্ষণ মুম্বাই কেন্দ্র থেকে

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन व्यथित था और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और अतिरिक्त सत्र अदालतों को लोक परीक्षा अधिनियम 2024 तथा भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत विशेष अदालत घोषित किया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक भी विस्तारित रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ।

0: समाचार कक्ष से वैष्णवी। वहीं गुजरात में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार गुजरात में इस मानसून में अब तक औसत वर्षा से 52% से अधिक हुई है। पिछले 24 घंटे में पाटन जिले के संतालपुर तालुका में सबसे अधिक 15 इंच वर्षा दर्ज की गई। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। ये अभियान लगातार बारिश, भीषण बाढ़ और बेहद चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के बीच चलाए गए। जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation letter to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said that he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying that it is not a matter of prestige for him. He said that considering the situation at Jantar Mantar in New Delhi and across the country, with the aim of preventing anti-national forces from exploiting it, as well as ensuring that not a single student's future gets entangled in legal complexities, he decided to tender his resignation to the Prime Minister. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said that following the irregularities in the NEET UG examination 2026, the government handed over the investigation to the CBI and cancelled the exam. The government also announced a fresh date for a re-examination. He added that the government decided to conduct this examination in computer-based test mode from next year. The government will hold third round of discussions with the CJP delegation in New Delhi this afternoon. The talks will focus on CJP's demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Delhi police has said that it is continuously monitoring the social media handles amid the ongoing protest over the NEET UG paper leak issue. Briefing media in New Delhi today, DCP Central Rohit Rajbir Singh said that Delhi police is sharing every information on fake news, AI and deepfake videos, edited clips and misleading posts through its social media handles. He said that more than 400 social media handles have been identified and blocked for peddling fake news and AI-generated content. The Madhya Pradesh High Court has designated 4 special fast-track courts to hear the examination paper leak and related malpractice cases, directing them to complete trials within 3 months of the filing of charge sheets. Acting Chief Justice Vivek Rusia designated district and additional sessions courts in Bhopal, Indor, Gwalior and Jabalpur as special courts under the Lok Pariksha Anuchit Sadhano Ka Nivaran Adhiniyam 2024 and related provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Vice President C.P. Radhakrishnan

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने ने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत, फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।
1: सलाम।

अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत, और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।

0: फकीरे वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे
1: अपने दुम में बांधे अरे

साला मेरा वो सब जाहिल बन गया, ए साला मैं तो साहब बन गया, अटेंशन, साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन

तेली या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा।

सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा के आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ, महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंगिस किंग फिल्म का ये गीत, मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है। चोरी चोरी ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: मन चाहे गीत।

0: मराठी तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: प्रिय महोदय, आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? डियर सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आपके सिंहासन पर बैठाने वाले हैं जनाब चंद्रा साहेब। हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मदरस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
4: वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
4: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
3: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन।
4: हाँ?
3: मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीश चंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
4: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
3: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
5: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
3: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों अख्तर? होगी।
5: ओह जनाब अख्तर साहब, यहाँ डटे हुए।
4: आधा वर्ष मियां,
5: मैं पूछता हूँ आखिर बात क्या है, कोई पार्टी वार्टी है क्या?
4: अरे मियां, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, हरीश की बेकारी पर मातमपुरसी करने चला आया था।
5: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
4: तो और करता भी क्या है?
5: देखो

0: ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
1: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं
0: तो और क्या है?
1: बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
0: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
2: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
0: जी हाँ, पर अकेले नहीं बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
1: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
2: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
0: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो, तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
1: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
2: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
0: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
2: करेक्ट।
1: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर चले।
0: चलो चलो।
1: रितु, क्या मंगवाए?
3: बस कॉफी।
1: बैरा?
4: जी सर।
1: दो कोल्ड कॉफी।
3: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
1: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली हैं। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
3: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
1: जरूर मिलती है।
3: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
1: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली हैं।
3: अच्छा
1: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती हैं? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
3: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
1: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
3: तुम मजाक कर रहे हो।
1: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
3: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है, ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
1: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
3: फिर वही बात।
1: रीतु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
3: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
1: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
3: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
1: साल दो साल, ये सजा क्यों?
3: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
1: तब तक मैं क्या करूं?
4: सर बिल।
3: तब तक बिल चुकाओ।
5: अख्तर।

0: हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
1: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
0: आसान होता तो तुम्हें यह नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
1: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
0: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
1: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है। गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
0: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
1: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे। अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
0: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
1: जी,
0: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
1: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
0: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम मिलाओ।
1: वो क्या मेजर?
0: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंती लाल को वही तो दल में लाई थी।
1: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
0: यू आर राइट, एंड दैट मीन्स मनी।
1: ऑफ कोर्स,
0: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना। अलका से भी कह देना।
1: जी।
0: सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
1: आप फिक्र मत करें मेजर।
0: ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
2: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
3: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
2: अरे यहीं था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
3: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
2: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे। अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
3: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
2: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं, बेकरारी के हैं।
3: मैं समझा नहीं।
2: बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
3: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
2: वो कैसे?
3: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
2: अच्छा,
3: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
2: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
3: यही तो समझ में नहीं आता। जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
2: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ, क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब न कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती?
3: छोड़ो इस बात को।
2: पर हरीश, तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
3: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता?
2: लेकिन वही रीता आप तुमसे इंतजार करने को कह रही। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
3: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो। उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
2: ये कारण अख्तर तो नहीं?
3: अख्तर?
2: हाँ, नहीं। उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता
3: हूं। नहीं, वो नहीं हो सकता। रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
2: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी। नारी इतनी सरल नहीं होती।
3: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है? स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे।

0: जरूरत नहीं।
1: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
0: अच्छा चलो
1: चलो।
2: हरीश सर।
0: नहीं नहीं सचिन।
3: हेलो हरीश। हाय सचिन।
0: हेलो हेलो।
3: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
0: हाउ डू डू।
4: हाउ डू डू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अक्ता साहब, से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
3: कॉफी? श्योर श्योर। क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है
1: भाई? आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
4: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
3: मैं भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
4: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
0: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
3: दैट्स गुड।
4: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र।
3: बैठिए। बैरा बैरा।
5: जी साहब।
3: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
4: जी नहीं।
3: तुम कुछ लोगे हरीश?
0: मैं कुछ नहीं लूंगा।
3: ओके बस तीन गर्म कॉफी लाओ बैरा।
5: अभी लाया सर।
3: हरीश अलका बढ़िया कहानियां लिखती है, गाना नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
0: That's a rare combination।
4: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
3: भाई ऐसी बात नहीं है।
5: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया।
3: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फॉरन बुलाया।
6: क्या हुआ?
3: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
6: चलो चलो हम भी चलते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
4: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
0: मैं छोड़ाऊंगा।
3: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
3: ओके
7: रितु, हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया?
4: क्यों, क्या हुआ पापा?
7: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं, थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
4: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
7: हाँ साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
4: लड़की खराब होगी पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
7: हरीश कितना बहक सकता है यो शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
4: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
7: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा, और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका, वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
4: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
7: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन DSP मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है, कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
0: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी अगली कहीं की।
4: मैं रोका रही हूं,
0: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं, अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
4: पापा मैं आपको दोष नहीं देती।
0: दोष मेरा है, मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा, समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी,

0: अगर आज आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये फूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
1: पापा, पापा हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था।
0: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
1: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
0: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कहां तक कुंडों के गिरोह से बच सकता है कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने कड़वाहट पैदा कर ली। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौर तलब है कि इंकलाब कहने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से ये इंकलाब बेहाफ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाते हैं।
3: देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते
0: हो। मेरी जिंदगी में कुछ लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूं मैं समाज का हिस्सा हूं, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: अख्तर, तुम मुझे किस जहन्नुम में ले आए हो?
1: इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत है। हूरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
0: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
1: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
0: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
1: मनीष, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले एक्शन में तुम्हारा यह हाल है।
0: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच बुजदिल हूँ।
1: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी। नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
0: अलका की

0: मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
1: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
2: शट अप,
1: जबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर उगलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
3: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
1: हरीश,
2: ये सब क्या है?
1: हरीश गद्दार है मेजर।
2: क्यों हरीश, क्या बात है?
3: मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
2: तुम्हें यह समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
3: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
1: ये बकता है मेजर।
2: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
3: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए।
1: हरीश, आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
2: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
1: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
2: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे।
1: मेजर,
2: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की।
1: मेजर,
2: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
0: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
1: हाँ, मैं जलील हूँ, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार दूँगा। मैं तुझे जान से मार दूँगा। ये ले।
4: Uh-oh.

0: ओहो, कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ? खून? अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चल

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशा को तो जल्दी चलिए। अच्छा,
0: मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है ऋतु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का

0: लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी। नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को, दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ, वापस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल।
3: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारती आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी
2: जी,
3: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक, डफ, मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
2: जी जी।
3: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शौकिया फिल्म से
2: जी।
3: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कसूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए
2: जी।
3: 2006 में मेरा पोता सोहिल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
2: जी।
3: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में
2: जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
3: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवी पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है
2: जी, जी।
3: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
2: जी,
3: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक
2: जी।
3: पर सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा। जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
2: बिल्कुल।
3: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे, फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर, सिंगर, एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे, फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार, मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे। छठा मैं, छठी मतलब छठा मैं था दिलीप सेन। तो करते करते निकला, एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
2: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे।

0: तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
1: जी जी।
0: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो कहेंगे छठी पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहां से
1: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की? कलकत्ता रेडियो से, वहां पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
0: मतलब टैगोर साहब मतलब
1: रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में कुछ साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर, वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे
0: जी।
1: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था, तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछें होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का
0: जी, जी।
1: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था।
0: हाँ।
1: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी।
0: खेमचंद प्रकाश
1: वो भी हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से
0: जी।
1: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी।
0: बिल्कुल,
1: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान की।
0: और वही आपके सुजानगढ़ के पास चुरू से थोड़ा पास बीकानेर शहर से जो है पंडित भरत व्यास,
1: भरत व्यास जी है, गुलाम मोहम्मद जी,
0: गुलाम मोहम्मद साहब।
1: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो वो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही
0: है। जी, जी।
1: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी।
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत। और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना, तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं। तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी।
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद भी मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक दिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक, अब ये दिन ताक दिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक दिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बनी। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर जोर शोर, अरे ओरे, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये एक गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारे दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ। क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपिन अय्यर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एच डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी। जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है, तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए, आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है, वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
0: वो वही,
1: जो हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को। तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने

0: दोनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी,
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति
0: आई, और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है, और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से
0: फिल्म, मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था।
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो। हाँ, बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे, या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी,
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते तीन चार साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीजें थी तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे तो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक लेने जाएंगे या पैसे दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल,
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये प्रकाशन में नंबर वन है इंडिया के, एक माने हुए प्रकाशन हैं, जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक तबला कोंगो बोंगो तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो सच्चाई
0: जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते। मैं बोला यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: तो 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150-200-300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था। बोले ये खामों का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे।
1: अच्छा, गीतकार।
0: गीतकार असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो
1: जी।
0: तो मैं असद वो वाली

0: बोला मैं चाचा कौन मुझे कौन डॉक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा, मुझे बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है समीर यार एक जगह सीटिंग है अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है। बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला, यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें। बोले यही बच्चे। बोले ये बच्चे सुनाएंगे। ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर साहब, वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया हमको, एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई। तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़ी की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे मतलब जब मैं सक्सेस हुआ तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी,
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं, मगर कंपोजिशन में बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुराना माने तो सुनाना चाहूंगा, हमने ये दिलेगी के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते, बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोले ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोले ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक पहले, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू तू नाक धुन तू धुन तू नाक धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे, और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे, क्योंकि इसका जो वर्ड था जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है,
1: क्या है?
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं
1: अपना ही
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है

0: क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं, आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसे

0: रहा।
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे,
0: जी
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो वो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सब में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं, ये 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे, बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
0: जी।
1: ये 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके से वो रहा, तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
0: कि एक नई बात है,
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
0: जी।
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: आईना और ये दिल लगे में
0: जी। तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब की एक शुरुआत में आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला
0: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
1: बहुत बड़ी नहीं, ड्रीम था, सपना था,
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी जो उम्मीद भी नहीं होती। तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूँ कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
0: अच्छा।
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
0: अच्छा।
1: फिर ऊपर करके कैसा बड़ा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी
0: जी।
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा तक दिना के दिन दिन तेना, उन्होंने वैसे ही गा दिया
0: जी।
1: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
0: अच्छा।
1: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहां पे सिंगर रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया। बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई, क्या जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा। मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मीड रह गई। बोले कैसे, बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद के ले जा तक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था। मैं बोले सजना वे मेरे नींद के ले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा तक, अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो वो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना, मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
0: नम्रता
1: के अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का लोंडा हूँ, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया
0: लेकिन एक महान,
1: मगर उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो मैं गाऊंगी, तो गाया और वो गाना कमाल हुआ।

0: बहुत सुंदर गाना।
1: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम वो सजना।
0: वाह बहुत सुंदर।
1: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं नहीं ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था।

0: की लगी ना समझो इसे दिल लगी, सुना उन्होंने मम्मी वाला इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से, बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं। तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यारे कमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यारे कमारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है नया स्टाइल है गाती हूँ, ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट हो रहा था।
1: हाँ।
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए गाएंगे नहीं।
1: हाँ।
0: बोला क्यों तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है ये मेरे दिल के करीब है
1: जी।
0: बोला अच्छा। तो अक्सर मैं क्या करता हूं जब कोई गाने उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूं तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था, धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था।

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: दो मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, बोला अच्छा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी। 3 घंटे बोले नहीं ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया, गाना हो गया। उसके बाद में तब तक खाना आ गया था, तो यश जी भी आ गए थे
1: जी।
0: यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चालू कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही समय में 4 गाने गाए हूँ।
1: ये
0: मेरे लिए बहुत
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही
1: जी।
0: और मैं समझ रहा हूँ शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए
1: जी।

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसे ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती थी, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा,
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबरी हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुनें,

0: उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन
1: बिल्कुल।
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा, लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे, अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में। तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे,
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता,
1: गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूं आपको, जैसे हरिहरन जी, चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं,
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की, चित्रा जी बोलते हैं उनको। उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: सकते हैं
1: क्या बात है, बहुत
0: तो ये गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी जी,
0: जब सैम दोनों सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुल पचीजिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, तो उसका एक गाना था

0: बहुत गहरा गाना
1: अब
0: था
1: ये गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते हैं।
0: जी
1: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो पौधा है, जो उनकी पोस्ट है
0: उसको भी रखना है,
1: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं, मैं एक मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ, नहीं, मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है,
0: जी
1: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाज ऐसे ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं फुल्लो? हाँ हाँ सर कर सकते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तुझे मैं छुपा लूं, ओ, तो ये मुर्गी रिमेन ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम
0: जी,
1: लुबराते हैं,
0: साइकोलॉजिकल।
1: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो अटक गए, तो अटक गए। तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और काबिल हैं।
0: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का।
1: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है
0: जी।

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंद, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, द्रविड़ भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाटिल।

0: पर है डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।

0: कौन रह गया?
1: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। हर इंसान का किसी न किसी वस्तु से भी गाढ़ा प्रेम होता है। उस वस्तु के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि कई बार अपनों से भी ज्यादा उस वस्तु विशेष का ख्याल रखा जाता है। पर अगर वो खो जाए तो

सामान जो हमें सबसे प्यारा हो हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो मानो हर रिश्ते नाते सुख सुविधा के बाद भी हमें चैन कहां। उसकी खोज में खुद तो लगते ही हैं, अपनों को भी लगा देते हैं।

तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि संभाल कर रखी चीजें ही सबसे ज्यादा गुम क्यों होती हैं, और ये गुम हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? क्या वो कहीं छुपकर हमें देखती रहती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम उनकी परवाह करते भी हैं या नहीं?

कई बार हमारे सामने दुनिया जहान की चीजें रखी होती हैं, पर मन मन तो वहीं अटका है उस गुम हुई चीज के साथ। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही ख्याल कि आखिर वो गई तो गई कहां।

सुन रहे हैं छाया गीत। क्या गुम हुई चीजें भी मेले में गुम बच्चे की तरह घर लौटने को बेताब रहती होगी? क्या वो भी मिलने वाले को अपने मालिक का अता पता बताती होगी? फिर कुछ इस तरह होती होगी घोषणा।

कोई चीजें जैसे ही किसी को मिलती है उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। शायद उन्हें भी याद आ जाती हैं अपनी गुम हुई चीजें, तभी तो वो झूम कर बताने लगते हैं मिली हुई चीज का हाल, खोजने लगते हैं उनका पता जिसकी है ये चीज।

एक बार जो गुम हुई चीज मिल जाए तो यूं लगता है जैसे सारी उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। इस जहान में कुछ भी नहीं है नामुमकिन, बस शिद्दत से खोजा जाए तो मिल सकता है कुछ भी। दिल का चैन, खुशियां, सुख, मन की शांति, और दिल कह उठता है तुम जो

0: ये है विविध भारती, विविध भारती देश का रेडियो।
1: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से पहली।
2: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
0: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
4: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
2: विविध भारती पर हर पल है खास।
0: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
2: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
5: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा है?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: প্রধানমন্ত্রী কিষান মানধন যোজনার মাধ্যমে ছোট ও সীমান্ত কৃষকদের ভবিষ্যৎ হবে সুরক্ষিত।
1: আর 60 বছর বয়স থেকে মাসে 3,000 টাকার পেনশন হবে সুনিশ্চিত।
0: প্রতি মাসে 55 থেকে 200 টাকার কিস্তি দিয়ে প্রবেশ করতে পারে 18 থেকে 40 বছরের কৃষক।
1: এই অংশীদারিত্বের যোজনায় সরকার দেবে সমান অংশ।
0: সকল কৃষক ভাই বোনেরা এই যোজনার লাভ গ্রহণ করার জন্য জনসেবা কেন্দ্রে যান
1: আর বিনামূল্যে নিজের পঞ্জীকরণ করান।
0: প্রধানমন্ত্রী কিষান মানধন যোজনা অন্নদাতার পরিশ্রমের সম্বল, পেনশন দ্বারা সুরক্ষিত তাদের ঘর। কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
2: অন্নদাতা কিষানো কি খুশহালি আর উনকি আয় মে বড়োতরি কে লিয়ে ভারত সরকার লগাতার প্রয়াসরত হে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি কে দূরদর্শী নেতৃত্ব মে পিছলে 7 বর্ষো মে খেতি কো আধুনিক আর কিষানো কো আত্মনির্ভর বনানে কে লিয়ে কই নির্ণয় লিয়ে গয়ে হ্যায়।
3: ছোটা কিষান বনে দেশ কি শান, ইয়ে হামারা সপনা হ্যায়। দেশ কে 80% সে জিয়াদা কিষান এসে হ্যায় জিনকে পাস 2 হেক্টর সে ভি কম জমিন হ্যায়। আব দেশ মে इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।

0: समझा।
1: हेलो हेलो हेलो
2: खाने मंगलवार कक्ता रंग।

आकाशवाणी अगरतला कक्तमा पर्यो किशोर जमातिया तिनी नै कक्तमा बुबक रकङखा केन्द्र निर्ण मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान विनी मन्त्री अशोक थाइया कर्खा मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खना कक्ति सालनी फुङदाम्ची छ आकाशवाणी निमन के पाठ पान्दानी बिसिङते हाकतत्ताई बुई हाकतर्नी लोपरक भाइ कक्लाम छलायन खास्ते फा इन्द्र सेनारे तिनाल्लो कामे आमचाइ रक्न फ्याक मुङ या कर्जाक खलाइना कबक मुङना रखा कमनवेल्थ गेम्स भारत पुइला मेडल मानखा केन्द्र निरुङ मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान विनी मन्त्री अशोक थाइया कर्खा ताई मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी निथानी विनी अशोक थाइया कर्मा काङबुलाई जमा रखा हदा लामो मुसाङ प्रधान साखा थांनाय सालसी रमै सोरोंनाय र खरांति सामा टंहा लग्न रोगी ब बेलाय बोखा बाइजाक बसाखा अब विनी साग बायथांनि बागै मुंसा रममानि ककिया दिल्ली कतालनि जन्तर मन्तरनि सिमि सेंगै हा कतर गनांगै ओं टंमा टंहा लग्न ककन वानसुगै अशोक थाइया कार ना ककसाप मुंना हारखा अबनि नाहर मुं हा कतर न केबेंजाक हामिया फान जेतै खेजे तंहा लग्न हामिया सामुंग फनां मान या नातै ताइ सोरोंनाय रकनि थिनां केरंनि गोराग राय दाव कबुलना नां यातै ब मन्त्री बक्रकनि दाखिमुं पैतो ताइ सुबा मुंनि बागै बन खाक हामिया फारखा बतायबो साखा हा कतर न मनानि ओंखा बिनि लांमानि जतनि कतर नायमुं मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खनां ककटि सालनि फुंदामसि सावा आकाशवाणी निमन की बात मान्दानि बिसिंतै हा

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

Gare gama de ni da ma gare ni da ba ma gare.